उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे, वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: ए अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायदे आजम की क़यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ए अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन व सुकून के साथ रहे। ए अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़, GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9896-8151।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ఐరన్ స్టోర్ హాలాణి హోల్సేల్ డిపు అ నేమ్ టు బి ట్రస్టెడ్
1: సరియా గార్డర్ టియర్ ఎంగల్ చేనల్ పట్టి లోహి దర్వాజా సిల్వర్ జా చౌక్ సిమెంట్ రేతీ క్రేష్ ఐ రంగ్ వగేరా బాజార్ కా బారియ దస్తయాబ్ ఆయిన్
0: హాణి యచు మెహరాన్ ఐరన్ స్టోర్ నజ్ బలోచ్ పెట్రోల్ పంప్ నేషనల్ హైవే హాలాణి
1: రాబ్తే లై ప్రొప్రైటర్ గులాం నబీ ముగల్ 03003204372 ఐ 02424601000
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-800।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

हुकूमत लागी तो पंजे डीएम की पेट्रोलियम शहन जे अगन में वाद करे छी पेट्रोल 3.60 रुपया डीजल 4.80 रुपया फी लीटर मांगो पेट्रोल जे नई कीमत 335 रुपया 18 पैसा डीजल जी नई कीमत 383 रुपया 46 पैसा फी लीटर थी वही नवा अघ 24 कलाक लाए लागू हुंदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन सा मुलाकात ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो ते ईरान ते वडे हमले बाबत अजा फैसलो नाहे कयो ईरान गालिन लाए संजीदा आहे मुआहिदो करण नथो चाहे तेहरान सा राबता जारी आहे नतीजन जो इंतजार आहे सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर होवण घुर्जे सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिस्सो न बणजंदो ते एकवी मुआहिदो न कंदासी ट्रंप के चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी अमेरिका पारा ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण की कोशिश कंदड़ जहाज के नाकारा बनाने की दावा अमेरिकी फौज जो चवण है तो जहाज 4 भेरा नाकाबंदी टोड़ण की कोशिश कई वधिक 12 जहाजन जो रुख भी मोड़ो वो अमेरिका अपना हरमुज में ईरानी टैंकर के तबाह कर छो ब जणा मार वया सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले की तस्दीक सऊदी इतिहादी फौज है यमन के अल हुदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणन स्ट्रीट जग हंधन के निशानो बणायो अल हुदीदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो समूरियूं बंदरगाहूं जहाजन के अचवन लाए खुलियल आहिनि।

0: खैरपुर जी अदालत में प्रिया समेत बेन मुगवी बारन जी बाजियाबी लाए लगल धरने ते तशद्दुद ए गिरफ्तारिन खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते बुधणी सोनी पारस लियाकत जलवाणी ए बेन जी आजादी बाद वकीलन दरख्वास्त वापस वठी छदी। अदालत दरख्वास्त वापस वठण ते उकलाए छदी। सोनी पारस लियाकत जलवाणी ए बेन के पुलिस रात देर सा आजाद कयो हो। भान सईदाबाद में ट्रक ड्राइवरन जो मोटरवे पुलिस के ज्यादतिन खिलाफ इंडस हाईवे ते धरनो। ट्रक ड्राइवरन गाड़ियों बीहारे मोटरवे पुलिस खिलाफ नारेबाजी कई। इंडस हाईवे ते धरने सबब बिन्हीं पासन का केतरी ही गाड़ियों बीह वयूं। मोटरवे पुलिस जो ज्यादतियों बंद करण जो मुतालबो। थानो बोला खान वेझो अस्पताल वींदड़न की गाड़ी हादसे जो शिकार। बिन औरतन समेत टे जणा फौत टे जख्मी। थानो आरिफ खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कलटी थी पई। औरत ताजल नाजा ए ताजो जावल बार फौत थी वया। टे जणा जख्मी। मुतासरन मूजिब अस्पताल वञण दौरान गाड़ी सा हादसो पेश आयो। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में किथे हल्की त किथे तेज बरसात। कराची मिट्टी ए छोर में ककर वसी पया। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में हल्की बरसात बाद मौसम खुशगवार थी वयो। मिठी ए छोर में भी हल्की बरसात मौसम खुशगवार थी वही। सूबे के मुख्तलिफ शहरन ते कारन ककरन जो राज। एक वण सिंध अमर के नाव। केटीएन न्यूज ए कावस के वण पोखण वे सड के भरपूर मोट। सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असरन का बचाण लाए वण लगाण वे सड ते सिंध वासिन वण लगाण शुरू कर छ्या। केटीएन न्यूज ए कावश पारा 31 जुलाई 2026 तीन वण पोखण जो सर डल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003 8569।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: हुकूमत लागी तो पंजे डी भी पेट्रोलियम शयन के अगन में वाद कर छी। पेट्रोल 3.60 रुपया ए डीजल 4.80 रुपया फी लीटर महंगो। पेट्रोल की नई कीमत 325.18 रुपया ए डीजल की नई कीमत 383.46 रुपया फी लीटर थी वही। नवा अघ 24 कलाकन लाए लागू हुंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात। ईरान खिलाफ वन हमलन ते गौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो ते ईरान ते वड़े हमले बाबत अजा फैसलो नाहे कयो। ईरान गालिन लाए संजीदा आहे। मुआहिदो करण नथो चाहे। तेहरान सा राबता जारी आहिन। नतीजन जो इंतजार आहे। सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर होण घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिस्सो न बणजंदो ते एटमी मुआहिदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी भी धमकी। अमेरिका पारा ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण की कोशिश कंदड़ जहाज के नाकारा बनाने की दावा। अमेरिकी फौज जो चवण है ते जहाज चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण की कोशिश कई। वधीक 12 जहाजन जो रुख भी मोड़ियो वयो। अमेरिका अपना हरमुज में ईरानी टैंकर के तबाह करे छड़ियो। 2 जणा मारजी वया। सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अलहदेदा बंदरगाह ते हमले की तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे ते यमन के अलहदेदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणन स्ट्रेटजिक हंधन के निशानो बणायो। अलहदेदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाजन के अच वञ लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी ए करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिन। कराची के भी 18 सालन दौरान तबाह कयो वयो आहे। हेठी सतह ताईं इख्तियारन जी मुंतकिली लाइ सब आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 2.60 करोड़ ॿार स्कूलन खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कंदड़नि माइरनि ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लगायो वियो जंहिं सबब दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। खैरपुर जी अदालत में प्रिया समेत ॿियनि मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ लॻल धरणे ते तशदुद ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सोणी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि जी आज़ादी बाद वकीलनि दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। अदालत दरख़्वास्त वापसि वठण ते उकलाए छॾी। सोणी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस रात देर सां आज़ाद कयो हो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरन में चौमासे जा वसकारा जारी। लाहौर सरगोदा हाफिजाबाद वहाड़ी ए बेन शहरन में बरसात। मुख्तलिफ रोडन ते गोडे जेडो पानी बीठल शहरी परेशान। मीरपुर बुरड़ो मां 5 डी अग अगवा थियल नौजवान आजाद न थियो। वारसन जो एहतजाजी मुजाहिरो। गोठ लाल बख्श बुरड़ो वासी नौजवान मोहम्मद रमजान बुरड़ो जे वारसन एहतजाज कयो। वारसन जो चवण आहे त नौजवान गुज़िरियल 5 ॾींहनि खां खानपुर वेंदे अॻवा थी वियो आहे। सख़्त परेशान आहियूं। इख़्तियारियूं नोटिस वठी नौजवान खे आज़ाद कराइनि। भान सईदाबाद में ट्रक ड्राइवरनि जो मोटरवे पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो। ट्रक ड्राइवरनि गाॾियूं बीहारे मोटरवे पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। इंडस हाईवे ते धरणे सबबि ॿिन्ही पासनि खां केतिरियूं ई गाॾियूं बीह वयूं। मोटरवे पुलिस जूं ज़्यादतियूं बंदि करण जो मुतालबो। थाणो बोला खान वेझो इस्पताल वींदड़नि जी गाॾी हादसे जो शिकार। ॿिनि औरतनि समेत 3 ॼणा फोत 3 ज़ख़्मी। थाणो आरिफ खान रोड ते मोड़ काटींदे कार कल्टी थी वई। औरत ताजल नाज़ा ऐं ताज़ो ॼावल ॿार फोत थी विया। 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। मुतासिरनि मूजिबि इस्पताल वञण दौरान गाॾी सां हादसो पेश आयो।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटर इस जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जह में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहराब स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

0: जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझन सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान खिलाफ वॾनि हमलनि ते गौर, सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾे हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर हुअणु घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआहिदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ऐं रूस खे ईरान जे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची जे रूस हम मुनसिब सरगेई लारोफ सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ख़िते जी सूरतयाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। अब्बास इराकची पारां आपना हर्मुज़ में अदम इस्तक़ाम जो ज़िमेवार अमेरिका करार। अब्बास इराकची चयो त ईरान आपना हर्मुज़ ऐं पुरज़म आहे। अमेरिका पारां ओमान में बहरी नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कंदड़ जहाज खे नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फ़ौज जो चवण आहे त जहाज चार भेरा नाकाबंदी टोड़ण जी कोशिश कई। वधीक 12 जहाज़नि जो रुख बि मोड़ियो वियो। अमेरिका अपना हर्मुज़ में ईरानी टैंकर खे तबाह करे छॾियो। 2 ॼणा मारिजी विया। सऊदी इतिहादी फ़ौज पारां यमन जे अलहदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जे अलहदीदा बंदरगाह में हूसी फ़ौजी ठिकाणनि स्ट्रेट जग हंधनि खे निशानो बणायो। अलहदीदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अच वञ लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी ऐं करप्शन चोर चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराची खे बि 18 सालनि दौरान तबाह कयो वियो आहे। हेठी सतह ताईं इख़्तियारनि जी मुंतकिली लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 2,60,00,000 ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कंदड़नि माइरनि ते बि डंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबबि दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। बलोचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में ऑपरेशन अलज़म जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया आहिनि। ऑपरेशन अलज़म दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग बि वधी 13 थी वियो आहे। हुकूमत लाॻीतो 5 ॾींहं बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 13.66 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फ़ी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 335.18 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383.46 रुपया फ़ी लीटर थी वई। नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। खैरपुर जी अदालत में प्रिया समेत ॿियनि मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ लॻल धरणे ते तशदुद ऐं गिरफ़्तारनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सोणी पारस, लियाकत जलवाणी ऐं ॿियनि जी आज़ादी बाद वकीलनि दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। अदालत दरख़्वास्त वापसि वठण ते उकलाए छॾी। सोणी पारस, लियाकत जलवाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस राति देर सां आज़ाद कयो हो। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासे जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, विहाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल, शहरी परेशान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाट ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खूबसूरत
1: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जनाब, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तो तैयार किए गए. अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से परचेज करेंगे, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा, तो आप लोगों को बताऊंगी ना. सब्र तो करिए, रुकें तो जरा, इतनी भी जल्दी किस बात की है आखिर. यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हो, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऐसा जो है ना, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तरीकेकार बताएंगे. लेकिन साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल क्या पूछा जा रहा है वो सबसे पहले बता देते हैं. ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं. बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग ज्यादा खाते हैं, यानी कि किस शहर में सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, और पेज को सर्च करने के बाद आप जब पेज पर आ जाएं तो आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव होती है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो के, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं. हाँ जी, इसी के साथ साथ जो है अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए. और साथ ही साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप बेधड़क रब्ता करते रहे, आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप फलां जगह से हैं तो आप फलां जगह से जाकर जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज करके, या तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों को नंबर्स बताए जाएं तो नंबर जरा नोट करते जाइएगा. नंबर है एक, पहला नंबर 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907, और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09 03-27-38-43-09. ये नंबर से आपकी आसानी के लिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो आसानी से करवा सकते हैं. उन्हें बताइए कि आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होने चाहिए. चाहे आप किसी भी जो इना सिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी गोट से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. ऐसे के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम, व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, उसके अलावा व्हाइट एश का ब्यूटी सोप है, व्हाइट एश का फेस वॉश है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है. अब इनके क्या तरीकेकार होंगे लगाने के वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी अनवर अली. दीदी अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा, कैसी हो? अदी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपको भी वेलकम कहा जाता है. आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं. और कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा. ओके, मैं कोशिश करती हूँ, लगाएंगे आपका गाना. अनवर कहते हैं पोएट्री अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उसके दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता. ओके, और चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं हाउ इज योर मूड एंड दिल का मौसम सिद्धो बेटा, होप वेल. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, आप बताएं कैसे. और हैं जी आबिद परदेसी भाई हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. इखलाक बलोच हमारे साथ, नाइस यू, थैंक यू इखलाक भाई. अनवर भाई कहते हैं सिद्रा आज आपका मूड ठीक है. जी जी, और मोहम्मद अली खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप अच्छा, यानी कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है। थैंक यू जी, थैंक यू। और अब्दुल गफूर केसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। चाचा खालिद आपने गाने की फरमाइश करिए, मैं लगाने की कोशिश करूंगी। और रमजान अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम इन मौला इस्लाम मदद कहा जाता है प्यारे भाई को। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम अस्सलाम मौला इस्लाम मदद, आप हमें सुन रहे हैं मिठू देरो से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और है जी अब्बास अली नोहरियो, अब्बास अली कहते हैं शहबाज जान नोहरियो, डिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्कर से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, वेलकम कहा जाता है। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अशोक कुमार हमारे साथ ही, हाय सिद्रा कैसी हो, आई एम अशोक कुमार। ओके जी, फ्रॉम दिल्ली इंडिया से अशोक कुमार हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच हमारे, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जनाब, आपका प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको ब्यूटीफुल सा गाना सुना देंगे। मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम स्वीट कोयल सदाबहार सिद्रा। बुआ जी हाँ जी बोले, कैसे ठीक ठाक। रमजान अली कहते हैं मेरा महबूब इतना नादान है कि पूछो मत, मोहब्बत का दावा हमसे करके साथ किसी और का निभा रहा है। वाह साई वाह, ये तो गदारी हो गई। अच्छा, मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, शो आपका वेरी नाइस है, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर, हाय सिद्रा प्लीज प्ले सॉन्ग, हाय सिद्रा तो लिख दिया, अपना नाम भी लिख लेते तो कितना ना अच्छा होता। नाम लिखा करिए अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं पैनल पर, खास करके मैसेज करते हैं। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जबरदस्त सिद्रा, आपकी सारी टीम को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद एंड बखैर अगले। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो जरा उसका जवाब बताइए ना। तो सवाल ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी बताइए मुझे जल्दी से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए जो कि पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: हर पहर जिंदगी की लहर जी
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। और डॉक्टर पिंपल, एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के क्या तरीके कार हैं? तो लगाने के तरीके कार थोड़े से मुख्तलिफ कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होता है ना, सिर्फ आप रात के टाइम ही लगाना पसंद करते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई जो क्रीमें होती हैं वो रात के टाइम लगाएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये क्रीम नहीं है, ये एक ट्यूब है और ये फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला भी है और साथ साथ मेडिकेटेड फार्मूला भी है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार किया गया है। और उसके अलावा इसे आप दिन में भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे। अगर एक नहीं बहुत ज्यादा है तो फिर आप 3 मरतबा लगा सकते हैं, यानी कि दोपहर में भी लगा सकते हैं। वैसे इसको लगाने के जो तरीकेकार हैं वो बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा ऐसा सीन बनेगा कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे ना, तो लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा। फेस वॉश करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। लगाने के बाद आप लोगों को इतना अच्छा ठंडक का एहसास होगा, इतना ठंडा ठंडा लगेगा ना आपको कि आके एक्नी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैं आखिर क्यों इस चेहरे पर आए, तो वो जल्दी से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक्नी तो क्या, एक्नी के निशानात खत्म हो जाएंगे, यानी पाड़ ही पटची वेंदर। तो एक्नी अगर तां खत्म करना चाहो था, दाना तां खत्म करना चाहो था, तां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल लाजमी करे दिस जो। उनखां अलावा असां मूव कयूं था बाबा, अगर तव्हां वाइट एज जो साबुण इस्तेमालु करणु चाहियो था, त तव्हां वटि वाइट एज जो ब्यूटी सोप मौजूदु आहे। ऐं वाइट एज जो ब्यूटी सोप जेको आहे उहो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो सफ़ा डिटो कॉपी आहे, सेम टू सेम आहिनि। यानी कि अगरि जहिड़े तरीक़े सां वाइट एज ब्यूटी क्रीम खे तयारु कयो वियो आहे, तीअं ई वाइट एज जो ब्यूटी सोप बि तयारु कयो वियो आहे। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एवोकाडो आहे, वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एवोकाडो आहे। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एलोवेरा आहे, त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एलोवेरा आहे। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि मिल्क आहे, त वाइट एज ब्यूटी सोप जे अंदरि बि मिल्क आहे। ही सफ़ा मतिलबु हिक ई सेम तरह सां तयारु थियल आहिनि, तव्हांखे रिज़ल्ट बि सफ़ा वी आई पी ॾियण वारा आहिनि। त जेके माण्हू साबुण इस्तेमालु कंदा आहिनि, त हू वाइट एज जो ब्यूटी सोप लॻाए सघो था। तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी, तव्हांजी स्किन हेल्दी रहंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते ग्लो ई ग्लो हूंदो। उन खां अलावा अगरि तव्हां चओ था त बाबा असां साबुण न आहियूं, त ॻाल्हि सिधी आहे, असां फेस वॉश हणंदा आहियूं, त बाबा टेंशन छो था कयो, तव्हांजे लाइ वाइट एज जो फेस वॉश भी मौजूद आहे। ऐं वाइट एज जो फेस वॉश आहे बाबा, ही थोरो मुख़्तलिफ़ आहे, छो त वाइट एज जे फेस वॉश खे जेको आहे न वाइटमिन सी सां तयारु कयो वियो आहे। हिन जे अंदरि वाइटमिन सी आहे ऐं वाइटमिन सी सां गॾोगॾु वाइटमिन ई बि अथसि। ऐं उन खां अलावा जेको आहे न वाइट एज जो जेको ही फेस वॉश आहे, इहो तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी स्किन जेका ब्राइट थी वेंदी, एंटी एजिंग जे लाइ आहे। ऐं तव्हांखे सफ़ा ईअं क्रीमी फेस वॉश मिली वेंदो, तव्हां चाहींदा बाबा वाह वाह अहिड़ा फेस वॉश त ईंदा रहनि, मुल्क तरक़ी कंदो रहे, त बिल्कुलु अची विया आहिनि। वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। उन खां अलावा जेको आहे सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आहे, ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे, सो जेके नाइट क्रीम हणण वारा शौक़ीन माण्हू हूंदा आहिनि, त उहो वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघनि था। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त तव्हांजी स्किन जेका आहे फ्रेश रहंदी, ग्लोइंग रहंदी ऐं तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी उन्हनि तमामु चीज़ुनि खां जेके चीज़ूं तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदियूं आहिनि। यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि ख़राब बि थी वई आहे त तव्हां टेंशन न वठो, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, बेदाग तव्हांजी स्किन थी वञे ऐं तव्हां सफ़ा ग्लो कंदा वठो। ऐं उन खां अलावा लास्ट में असां वटि बचो आहे बाबा असांजो फेवरेट प्रोडक्ट, जंहिंजो नालो आहे अज़ीमो शान शहनशाह वाइट एज लवली क्रीम। हाँ यकीन जाने वाइट एज लवली क्रीम मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी भाई हर एक इंसान को नीड होती है, हर एक इंसान की जरूरत वाला प्रोडक्ट है। अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले सुन लेंगे वाइट एज लवली क्रीम के जो फायदे वो कितने ज्यादा है। और वाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, रात में लगाएंगे, जब आपका दिल करे तब लगाए, क्योंकि फेयरनेस क्रीम जो होती है ना वो ऐसे बस चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपके स्किन के मुताबिक तैयार की गई है, तो बिल्कुल जी। वाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है, जिसके अंदर 30 विटामिन्स कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन का ख्याल रखते हुए इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को सिर्फ खूबसूरती मिलेगी, बल्कि ऐसा है कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख्वातीन हैं, हर कोई वाइट एज लवली क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं और आपको जल्दी में सुबह सुबह रेडी होकर जाना पड़ता है काम पर, तो आप वाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी स्किन ग्लो भी करती रहेगी, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहेगी सूरज के इन खतरनाक रात के साथ। तो बिल्कुल अगर आप भी वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी बन जाएं खूबसूरत और खूबसूरती आपको मिले वो वाली जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03125025907
या वरी तव्हां डायल कंदा 0332 7

0548-484309. ओके जी, सो जल्दी जल्दी से ये नंबर्स डायल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिलती रहे और आप भी ये सोचे कि भाई जान अब हम भी हसीन हो सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, देर मत कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए फेसबुक पर. जितने लोग हमारे साथ पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए. बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से ज्वाइन किया है ये भी बताइए.

हाँ जी भाई तौबा है, इतना हुसन आपको मिल जाएगा कि लोग पूछेंगे आप सर आप उन्हें बताइएगा कि ये कमाल वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। इसी के साथ साथ अशोक कुमार भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं यू वेलकम जी, आपका शो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार भाई। अनवर कहते हैं सॉन्ग सुनाए असा हथ मथे क्या सीन डाडोआ, लगाने की जी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वासु भाई, वासु भाई कैसे हैं, ठीक ठाक। मोहम्मद जमान कहते हैं सुंदर कहा था, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ। रिजवान अली हमारे साथ कहते हैं हाय बहन कैसी हैं आप, आपका शो वीआईपी है, रिजवान मरी मेहरापुर से हमारे साथ है, वेलकम जी, खुश आमदीद।

से रिहाना हमारे साथ हैं बकर से, आप हमारा शो सुन रही है। रिहाना आपको भी वेलकम कहा जाता है। मोहम्मद अली खोसो भाई कहते हैं मेरा सलाम दीजिएगा अयूब भट्टी बाबल खोसो को। ओके जी, रिजवान अली बलोच हमारे साथ हैं, हाय। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहती है कि चंदा जानी आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है स्वीटी। कहती माय फेवरेट आरजे चंदा, हां जी। इकबाल लाशरी हमारे साथ ही, बाजी सवाल जवाब आहे। इटली में तो सब का वधिक पिज़्ज़ा ठयो वेंदो आहे, ऐं हा इहा ॻाल्हि बि आहे त जिते सभ खां वधीक पिज़्ज़ा ठहियो वञे थो उहो सिटी त खाई कोन थो, ऐं ॿियो हिकिड़ो सिटी आहे उहो खाए थो। इहो छा लॉजिक आहे, इहो तव्हां ॿुधाईंदा मूंखे? सभु कुझु मां कोन ॿुधाईंदसि न। अनवर तव्हां बि सवाल जो जवाब ॾिनो आहे, ओके जी। दर्द दिल हमारे साथ और कहते हैं, ऐसा लगती है वक्त खामोश मगर कीमती, वक्त का गुजर जाना तो कुदरत का निजाम है मगर वक्त को जाया करना ये इंसान की अपनी नादानी है। लम्हे कीमती हैं मगर हम अक्सर उनकी कदर उस वक्त करते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। ऐसा ये वक्त की कदर आजकल कोई नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है, तो वक्त की कदर करनी चाहिए, सही बात है। और रमजान अली कहते हैं मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, फकत ये कहकर अब हम आपके कुछ नहीं लगते। क्या बात है रिजवान भाई, रमजान भाई आपके बिल्कुल नीचे रिजवान अली बलूच भी मौजूद हैं जी, खुश आमदीद कहा जाता है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। और बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, भाई आपके एरिया में नहीं अवेलेबल, आप लोगों की सिटीज में नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो नंबर बता रही हूँ ना, बस वो नंबर डायल कर लिया करें। नंबर जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी वाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप बस वहां से जाएंगे और परचेज करके आएंगे। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप जल्दी से जो है ना वो अवेलेबल कराइए, उसके बाद इस्तेमाल करते जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस हम कह सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप खूबसूरती तो बढ़ाएंगे लेकिन खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे। तो खूबसूरती की हिफाजत कीजिए और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए।

ओके जी चाचा खालिद कहते हैं दोनों में से, अच्छा आपने पूछा है कि आप कौन सी वाली लगाएं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की स्किन के मुताबिक. अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्किन कैसी है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग सिलेक्ट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे चेहरे के ऊपर सूट कर सकता है. तो वो आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है. और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर, ऐसा नहीं है मोहम्मद जमान भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है. सैयदा बुखारी हमारे साथ कहती है सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मोहतरमान जनाब क्या हाल है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन, और यारब अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन मेरी जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. कहती है कि वफा का दर्स लेना है तो फूल से ले, जो पौधे से जुदा होते ही मुरझा जाते हैं. सैयदा बुखारी राइटर, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया. और कहती हैं आई मिस यू सो मच, वेलकम कहा जाता है प्यारी को.

ओके जी, वारी वारी जावा, लेकिन आप तो ये बताइए वाइटेश का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा साजिद हुसैन सुमरो कहते हैं शो आपका नाइस है, शमन का गाना लगाइएगा. बिल्कुल लगाते हैं. हैप्पी गर्ल कहती हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं. अच्छा समीरो चौहान हमारे साथ हैं थर पार्कर से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है. और आबिद रसूल आबादी की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई तवां की चौथा भली करी आया प्यारा भा. कश्मोर से एक लाख भाई हमारे साथ ही, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि आप समझ गए होंगे कि आपका गलत जवाब है. अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, हाँ ना इस्तेमाल करती रहिए. और गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बाजी काल सिस्टम रखे सॉन्ग अल्लाह दिनो जुनेजो का सुनाइएगा. कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे. और चाचा खाली जुनेजो कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके ओके ओके, मैं लास्ट में आपको बताकर जाऊंगी कि किसका जवाब जो था वो असल सही था. और हमारे साथ ही चाचा खाले जुड़े जो आपने गाना लिखा लगाने की कोशिश करेंगे जी. और उसके अलावा आबिद रसूल आबादी सबनी दोस्तन के सलाम अदी किस्मत सा अर्ज कयो आप बरकत भट्टी जो गानो हलाए जो ओके भामा कोशिश क्या पसंद जो गानो तुधराइंदी मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया.

मोहम्मद सलमान भाई पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहे हैं, मत करिए ऐसा भाई जान। और उसके अलावा जो है ना, मतलब आप अपनी बुआ जी को चिढ़ा रहे हैं। ओके सो ऐसा करते हैं, यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी होने वाली है, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे, घबराइएगा नहीं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनती रहिए और सादिक जी पूरी पूरी 3 बजे तक, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी हसीन हो जाए।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: गुरबत तुझे
1: अलावा कुछ माण्हू वाकई अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे न इहा ख़बर न हूंदी त असांजी स्किन सेंसिटिव आहे. मतिलबु उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी हुन सेंसिटिव स्किन जे मथां हू तरह तरह जा प्रोडक्ट इस्तेमालु पिया कंदा आहिनि. ऐं इस्तेमालु करण जी वजह सां छा थींदो आहे त उन्हनि जी स्किन जेका न हमेशह ख़राब रहंदी आहे. तयारु थियल आहे मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. डॉक्टर्स जी निगरानी जे अंदरि बिल्कुलु हिननि खे डॉक्टर्स खे विहारे करे तयारु कराई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीड्स आहिनि, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन आहे. उन खां अलावा तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल में. छा त सम्झो चौकजी वई न बिल्कुलु. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे त तव्हांखे वेट न कराईंदी बाबा, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ 2 रातिनि जे अंदरि रिज़ल्ट ॾींदी. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो त तव्हांखे इहा बि ख़बर हुजे त 2 दिनों में जवाब को रिज़ल्ट दे दे. सब आप लोग ये ना समझे कि बस जो हमें रिजल्ट मिल गया तो ये अगर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारी खूबसूरती कहीं गायब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा. जो आपको खूबसूरती मिल गई है वो बस आप ही की है, आप रख लें. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सिर्फ 2 दिनों में आपको वाजे नताइज देती है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई है जैसे कि अल्फा आर्बुटीन, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन. इस तरह जो है ना ये तमाम चीजें अगर आपकी स्किन के ऊपर आती है रात भर आपके चेहरे पर जब मौजूद रहती है तो आपके जल्द को चमकदार बनाती है. डार्क सर्कल्स हो या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा निशानात आ चुके हैं या फिर आपकी जंगत जो है वो बड़ी सांवली सी हो चुकी है तो ये तमाम चीजें जो है वो खत्म जाती है. और उसके अलावा आपके चेहरे पर नमी फराहम कर देगा और जल्द को गहराई से मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी जल्द अगर किसी भी तरह की हो, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के मुताबिक डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. इसे लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे भाई, सभी जो हका ना खूबसूरत थियण सो तां सभी लगाए जो मर्द मायूं सब. डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन फेस वॉश की न विसारो बाबा न तो रोइंदो वेचारो. डी स्किन वॉश भी तुम्हारे लिए आए. डी स्किन फेस वॉश की गाल कई वे तो डी स्किन फेस वॉश जो है हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है जो एतरो जबरदस्त सीरम हों तवी स्किन के अंदर वेंदो तवी स्किन के हाइड्रेट कंदो आहे, तवी स्किन के क्लीन कंदो आहे, मॉइस्चराइज कंदो आहे एंड डीपली तवी स्किन के अंदर तक वनी तवाके ग्लो दींदो आहे. सो डी स्किन अगर तुम फेस वॉश लगायो पाया तो तुम खुश थी वो तो तुम हाँ तमाम जबरदस्त फेस वॉश अवेलेबल है. ये तमाम जी प्रोडक्ट आन यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है ये प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आन जो तुम इस्तेमाल करना तो तुम खबर पवी तो तुम वाकई केडा सुठा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर शुरू कया है. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन फेस वॉश हणो सफा का टेंशन की गाल कोने बाबा, सफा VIP स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट आन. उन अलावा अगर तुम पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था तो पोई तुम डायल कंदा 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे, अगरि हीउ नंबर नथो मिले त ॿियो नंबर आहे 03-32-73-84-309. ये नंबर आप डायल करेंगे और आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके एरिया में कहाँ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे तो वो अवेलेबल करा देंगे. तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि भाईजान कितने सारे प्यारे लोग हैं जो प्यारा बनना चाहते हैं और उनके एरिया में नहीं अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ये तो सरासर नाइंसाफी हो, तो अवेलेबल कराइए, थोड़ी सी मदद कीजिए और उसके अलावा खूबसूरत हो जाए. तो जनाब यहाँ पर गाना लगाया है जिसकी फरमाइश मुझे 2-3 दिनों से अरीबा कर रही थी.

साईं छा इहो मुमकिन आहे आहे आहे प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो कौन कौन मौजूद हैं? अरिबा कहती है ओ मेरी प्यारी आपी, हाँ पी जान अच्छा आबिद रसूल आबिद रसूलाबाद खान जेको भाषा के बुद्धि पयो तां बरकत भट्ट जो गानो चयो आ मां इन में थोड़ो कंफ्यूज थी वियम त बरकत भट्ट जेको आ बरकत अली आहे मु सर्च कयो त बरकत अली हुयो बरकत भट्ट मूंखे कोन मिलियो तो अगर हू सेम सिंगर आहे त मूंखे ॿुधायो त तव्हांजे लाइ गानो हलाईंदासीं समझो था। मां थोड़ी सिंधी सिंगर्स में मां कंफ्यूज आहियां छो त मेरा साबुन स्लो है। अच्छा उन खां अलावा गुलशेर बाबर एंड मुज़म्मिल बाबर विलेज अला वरायो बाबर से असां सां गॾु मौजूद आहिनि। सो भाइरनि जूं मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया मैसेज छा तव्हांजो मिसिंग पार्ट थी वियो आहे और ये मौजूद आहिनि अस्सलाम वालेकुम सिदरा मुस्कान कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा फौजी पठान खान खोसो है सिदरा गानो लिखियो आहे तव्हां डेडिकेट कयो आहे हसीना सूमरो खे डॉक्टर हसीना सूमरो खे ओके। अच्छा इनम कहती है प्यारी

ओके जी, शोनी कहती है आप ही जान मैं भी आ गई, आप ही सुबह कब होगी, आप ही कल के दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करें तो आपको आज का दिन बहुत बड़ा लगेगा, गुजरेगा ही नहीं। तो वेट करना चाहती हैं तो बस थोड़ा सो जाए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरा तो फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी अब जो वक्त है वो तेजी से गुजर गया है। और शायद बबर की आवाज में हमने यहाँ पर गाना लगा लिया है, शाह जमाने मूसा घटके हुई जो तू भी निकली आए।

0: स्वागत है प्रोग्राम आहे व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने पयो बाबा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सा त अगर तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या करण चाहियो था त तहां लाज़मी इस्तेमाल करे दिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे काहे
1: सारी दुनिया खा वधी
0: एतरी जबरदस्त क्रीम थव अगर तहां इस्तेमाल करे दिसना तहां के खबर पेजी वेंदी एकदम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे बेओ त डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार थियल आहे टियों त बिन डीन में तहां के रिजल्ट दींदी एं चौथों त सब इन जे अंदर जेके चीजों एड थियल आहे सब तहां जे स्किन लाइ जरूरी आहे सो ये सब चीजों जडे मिली करे तहां के निखार दींदी तहां के रिजल्ट मिलंदो तो तहां खुश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो एं गड तहां डी स्किन जो फेस वॉश भी वठी सघो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो एं डी स्किन फेस वॉश हणो नथा मिलनि त जेके नंबर ॿुधाईंदो उन्हनि ते राबितो करे वठो

0: दिस गलत गाला।
1: अच्छा तो ना दर्द घटा देना जो वही तो गया दुश।
0: ओके आबिद भाई मां समझी हुई, हम ठीक आए, थैंक यू सो मच। हाँ वो उन्हें जी कास्ट होंगी ने करी करी मां वाकई एड़ा कम करी वेंदी है जो पानी खिल लेंदी है। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी हैप्पी गर्ल, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये रुखसार मरी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आप ही क्या हाल है, आपके आपका शो सुन रहे हैं आप ही। अच्छा कहती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ तो मैं ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती, लेकिन हाँ फेस वॉश लिया है, अम्मी और सिस्टर यूज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। रुखसार मरी मीरपुर खास से, क्या बात है, आपको खुशहाली कहा जाता है। वैसे कौन सा फेस वॉश लिया है, व्हाइटिश का या डी स्किन का।

ओके टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी तवानी मोटी ना तवा इते बैठा हो जो काडी न मंजो सब पानी सीट तना जो मा ओही मनी ओही मोटा थी सो सीट यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: مورو
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिले, तो आपके लिए नंबर है जो कि प्रोग्राम में बताती हूँ, ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके और आपको आसानी हो। अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03-12-50-25-907, या फिर दूसरा नंबर है 03-32-73-84-309। ये नंबर है जो कि आपकी आसानी के मुताबिक है, ताकि आप इन्हें डायल कर सके और इनसे मालूमात ले सके, वो मालूमात जो आप लोगों को शायद मुझसे नहीं मिलती। और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, देन आप इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें,

हाय क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जरूर कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुल मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते साथ आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसे लगाने के बाद आपकी स्किन मजीद खराब हो चुकी है। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं कि चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का भी इंतखाब करेंगे, दोनों चीजें साथ में लगाइएगा। और इसी के साथ साथ मैंने जहाँ पर आप लोगों से जो सवाल पूछा है, टॉपिक प्रोग्राम का ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर में खाया जाता है, किस शहर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं, और इसके साथ साथ

0: ओगनी, तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो. साथ साथ ये गाना डेडिकेट जाता है अली मुर्तजा के नाम. ओके जी, अली मुर्तजा ने जो चौपे का जवाब दिया था वो बड़ा वखरा दिया था, लेकिन क्या ही बात की, आपके जो कमेंट है वो ऊपर चले गए. वैसे वो ड्रामा मैंने देखा नहीं, लेकिन ड्रामे की थोड़ी सी क्लिप्स देखी थी, उसमें ये पता चला था कि वाकई डिलीवरी बॉय होता है उस पर उसका दिल आ जाता है. सही है भाई, शुरू करें अभी नेकी और पूछ. नजीबुल्ला बिरोई हमें सुन रहे हैं. हाय, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
1: मैंने देखी मेरी महबूबा तेरी मख.
0: ओके जी, ओके, मुझे बात समझ आ गई. और मोहम्मद जमान कहते हैं, बुआ
1: क्या पूरिया
0: भाई. आप ऐसा कीजिए मोहम्मद समान, आप डी स्किन का फेस वॉश जो है ना वो लगा के देखिएगा. सच्ची मुझे बता रही हूँ, बहुत कमाल का फेस वॉश है. जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का. और मुश्ताक अच्छा, मुश्ताक बलोच हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है.

होंगे जी, महबूबा है और महबूबा की क्या बात है। और वहीद वफाई कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, क्या हाल चाल है आपकी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन है। जेकब आबासी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। रुखसार मरी कहती है, डी स्किन लिया है, बलोची सॉन्ग सुनाएं, डेडिकेट हमारी पूरी फैमिली और आपको, बलोची गाना आपने सुना होगा। और अब्दुल रजाक बलोच हमें सुन रहे हैं, दादू से वेलकम जी। इस गाने के साथ बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है।

अरे भाई जवाब बताने कितनी जल्दी क्या है बताऊंगी, अभी तो टाइम पड़ा है, रुको जरा सब्र करो। यूनिस खोड़ो हमें सुन रही है, कहते हाय अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमजान लिखते हैं कि कहते तो जो दिल क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे, आज कहते हैं छोड़ दो हाथ मेरी इज्जत का सवाल है। वाह साईं वाह। अच्छा ये किशोर भाई हमारे साथ, के लिए सलाम अदा की आयो, खुश चाक चंगा भला डियो, खबर सब खैर ता है, सब खैर मजे में ताम बताया, घुमी फिरी मजा करी आयो। अच्छा दर्दे दिल कहती है चंदा कल से इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हैं। नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसे क्या है कि कभी कभार इंसान को थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। और ये मैंने गाना लगाया है जी बरकत अली की आवाज में।

मूंखे जी कारे वगे सां दिल आहे पंहिंजी उन ॾींहुं मां हिकिड़ी रील ॾिठी जंहिंमें हिकिड़ो माण्हू चए पियो त चवनि था त कारो वॻो लहे नथो असांजो जेके कारो वॻो ठहे नथो उहा चीज वाकई थोरी लॻी त कुझु कुझु माण्हुनि खे कारो वॻो वाकई न आहे ठहंदो कुझु माण्हुनि खे वरी ॾाढो ठहंदो आहे सो ॻाल्हि ते ठहण जी न आहे पर कुझु माण्हू वरी आशिकी जे तौर ते कारो वॻो पाईंदा आहिनि सो खैर कारो वॻो पाइण जो शौक़ु अथव त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी हणिजो ठीकु आहे तव्हांखे ठहे कारो वॻो ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मिले थी ऐं गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिले थो हाणे तव्हां ते आहे त तव्हां ॿई चीज़ूं लॻाए था या जेका दिलि चवे तव्हांजी सा तव्हां लॻाए सघो था और किशोर भाई खे अदा घबरान आऊं आ गया हूं भलो कयो अथव भलो कयो और हीअ जी हमारे साथ ये हैप्पी गर्ल क्या कहती है मैं आपके शो की दीवानी हूँ मतलब आपके लिए पागल हूँ सच्ची बताएं अच्छा ए मंसारी कहते ऑरेंज कलर

ना करें भाई, दिल को संभाल के रखें सर. अच्छा दिल के संभाली रखो बाबा, संभाली रखो कमी दव. अच्छा मोहम्मद रहीम राजड़ हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम तवा के वणे पयो, थैंक यू. और अली मुर्तजा कहते सेम ईयर पीटीवी का वो दौर, मेरे टाइम में एटीवी आ चुका था और एटीवी पर ये ड्रामे गाने चलते थे. शाम के टाइम पर एक शो चलता था, उसका पता नहीं क्या नाम था, थोड़ा अजीब सा नाम था, अजीब सा मतलब डिफिकल्ट था, याद नहीं रहा. तो वो हम देखते थे, वो पसंद होता था. शुरू से बचपन से मुझे गाने सुनना और देखना बड़ा पसंद था.

जी चाचा कहते हैं डी स्किन क्रीम का फेस वॉश कमाल, यू कैन सी इन माई डी पी. ओके जी चाचो तो सफा हीरो लगो पयो. वाह वाह वाह वाह चाचा ई बाबा डी स्किन जो फेस वॉश हणो डी स्किन जी हाने क्रीम भी हणण स्टार्ट कयो समझो था. अच्छा हैप्पी गर्ल कहती है मैं कभी कभी आपको मैसेज ना करूं तो आप समझ जाना कि मैं आपका प्रोग्राम शामिल नहीं हो पा रही, लेकिन आप समझ लेना कि मैं आपका शो सुनती हूं. ओके जी ओके हम समझ लेंगे यही बिल्कुल जो आपने बोला और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और उसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उनके ऊपर रब्ता किया करें, कॉल या फिर एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें, उनको बताएंगे भाई आप कहां से हैं और आप शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते ये प्रोडक्ट तो वो अवेलेबल करा देंगे. उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी. तो थोड़ा सा आप जो है ना कोशिश करें कि ये नंबर जो आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर रब्ता करें, कॉल या फिर मैसेज आप जरूर किया करें. और सोनी कहती हैं आप ही वाह साई वाह वाह साई वाह यानी फुल मजे में एंजॉय करना. और ये अदी सिद्रा में आफ्ताब अहमद मक्सी, अदी प्लीज सॉन्ग फायजा अली का सुनाइएगा मिल सोहना, डेडिकेट आपने किया है मेरी जान ए के नाम. चले ये गाना अगर अभी नहीं चल सका, वैसे अभी नहीं चलेगा, 5 बजे वाले प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी ठीक है, आप 5 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा. अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है, कहते सलाम था कयो प्यारे शो में अवांखे, वालेकुम अस्सलाम. हाँ सोनी मैं समझ गई. और विलेज मोहम्मद पंजल शर से ममताज अली शर के वी आई पी प्रोग्राम हले पयो तवाजो, थैंक यू भा.

जी बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हैं यहाँ पर हैप्पी गर्ल कहती है लाड़काना में तो मिलता ही ना प्रोडक्ट। हाँ जी बिल्कुल लाड़काना में आपको कहीं से भी जाएंगी तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जी जी बिल्कुल सवाल का जवाब बताती हूँ। और इखलाक भाई कहते हैं डी स्किन का क्या कमाल है। जी जी शायद कुछ ऐसा ही सीन है लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। किशोर भाई कहते हैं खुद को आजमा के हम नहीं रोएंगे। भाई रोना भी नहीं चाहिए, खुद को आजमा के क्यों ही रोएंगे। कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती और हम हैं कि समझना चाहते भी नहीं। ओके सो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिज्जा है वो किस शहर के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क के जो लोग हैं ना वो पिज्जा सबसे ज्यादा खाते हैं दुनिया में। मतलब एक ऐसा सिटी बन चुका है न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला जो ना वो सिटी है, तो न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है। अब आप देखेंगे किसने सही जवाब दिया किसने नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि किसने सही दिया किसने नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर टाइम भी आ जाता है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए, हमारे जाने का वक्त आ चुका है ना, क्या करें।

जी क्या बात है, ये हमारे साथ है शमसुद्दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम इज वेरी गुड, थैंक यू जी। आपको खुशामदीद कहा जाता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितने अच्छे प्रोडक्ट है। तो इस्तेमाल करते रहिए और अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगाइएगा, ताकि आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उसको भी जरा राहत मिले और आपके चेहरे पर सुकून आ जाए, और आपके चेहरे पर जो एक्ने है, मसाले, वो सारे दूर हो जाए और आपकी खूबसूरती आपको मिल जाए। ऐसे के साथ वरी मिल रहा था तमाम पंची बजे वाले प्रोग्राम में, और चाचा जो दुनिया में सबसे ज्यादा कम पिज्जा खाने वाला मैं हूँ। माँ भी घट खाई ना, घटिशा मतलब समझो खाईंदी ना, पिज्जा मुखे ना वणंदो। आई को दो रो घणो खाधो सी, पर जे चवंदा ना खाई खाई वरी इंसान बेजार थी वेंदो आ, वो आई गाल। पंजे बजे मिलूं था वरी तवहां जॉइन कंदा, इन खां अलावा किथे का गलती थी हुजे त माज़रत कयूं था, फीडबैक रहिजी वया आहिनि त माज़रत कयूं था, मैसेज रहिजी वया आहिनि त माज़रत कयूं था, गाना रहिजी वया आहिनि त माज़रत कयूं था। तो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: भारत में जिन जी जे पेपर लीक खिलाफ तहरीक कामयाब, भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी जैन जी जो जंतर मंतर ते जशन। पेपर लीक ता शुरू थे तहरीक भारतीय वजीर आजम मोदी के गोडा खोड़ाए छड़ा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थे वजीर धर्मेंद्र प्रधान जे इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वारे वजीर जे इस्तीफा जो बुधी दहली जे जंतर मंतर पार्क में वेठल जैन जी जो जशन। पुलिस पेपर लीक खिलाफ एहतजाज कदड़े नई दिल्ली में तशद्दुद भी कयो हो। चीन पारा खिते में जारी सूरत चीन पारा खिते में जारी सूरत हाल ते गणती जो इजहार। अमेरिका ईरान का मसले के हल लाए जल्द गाल शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जी ईरानी हमुनसिब वांग जे सां किर्गिस्तान में मुलाकात। चीनी परदेही वजीर पारा ईरान के खुदमुख्तियार की हिमायत। वांग जी चयो त इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खिते में अमुन इस्तेकाम तरफ वंजण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ए बेन मुल्कन के सालसे वारन कोशिशन की हिमायत जारी रखो। अब्बास इराकची चयो त अमेरिका जंग बदी मुआहदे की भंजकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तेहरान के गालिन वारी ख्वाहिशन के बरकरार आहे। चट्टान में वाद नथा चाहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात। ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो ते ईरान ते वडे हमले बाबत अजा फैसलो नाहे कयो। ईरान गालिन लाए संजीदा आहे, मुआहिदो करण नथो चाहे। तेहरान सा राबता जारी आहिन, नतीजन जो इंतजार आहे। सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर होवण खपे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिस्सो न बणजंदो त एटमी मुआहिदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी भी धमकी। सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले की तस्दीक। सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे त यमन के अल हुदीदा बंदरगाह में हूसी फौजी ठिकाणन स्टेट जक हंधन के निशानो बणायो। अल हुदीदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो। समूरी बंदरगाहू जहाजन के अचवन लाए खुलियल आहिन। सिंध में बदमनी ए करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिन। कराची के भी 18 सालन दौरान तबाह कयो वयो आहे। हेठी सतह ताईं प्यारन जी मुंतकिली लाइ सब आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आहे त सिंध में 2.6 करोड़ बार स्कूलन खां बाहर आहिन। मुगवी बारन जी बाज़ाबी लाइ एहतजाज कंदड़न मायरन ते भी डंडा वसाया वया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लगायो वयो, जंहिं सबब दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। बलूचिस्तान के मस्तोंग वारे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अर्जम जारी। सिक्योरिटी जरियन मूजिब मुख्तलिफ कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन जा केतरा ही ताक तबाह कया वया आहिनि। ऑपरेशन अर्जम दौरान मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग भी वधी 13 थी वयो आहे। हुकूमत लागीतो 5 ॾींहं भी पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद करे छॾी। पेट्रोल 3.66 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 335.18 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383.46 रुपया फी लीटर थी वई। नवा अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। कराची में HIV जो गणती जोगो फैलाव। अस्पतालूं बारन में HIV वायरस जे पखेड़ जो सबब बणजण लॻियूं। वलिका अस्पताल खां पोइ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडीअ मां बि HIV जा केस ज़ाहिर। 4 महीननि खां 8 वरनि जे उमिरि ताईं जे 12-15 बारन में HIV जी तस्दीक। जनवरी में 4, फेबरवरी में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5 ऐं मई में 3 HIV केस रिपोर्ट थिया। मामले के दबाइण की कोशिश कई वही। वधीक केस जाहिर थियण जो खदशो। ज़रियन मूजिब HIV मुतासिर बारन जो इलाज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडी में थियो। वलिका अस्पताल में 78 बारन में HIV जा केस जाहिर थिया हुआ। 9 बार HIV सबब फोत थी चुका आहिनि। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की चटाभेटी इम्तिहान में मुबैना पंहिंजा नवाज़ी खिलाफ शागिर्दन जो ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज जारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी ऑफिस साम्हूं क़ाइम कयल कैंप ते राति गुज़ारे। एहतजाज में मुतासिर उमेदवारनि सां गॾु बि शागिर्द बि शरीक थिया। खैरपुर जी अदालत
1: में। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: भारत में जिन जीजे पेपर लीक खिलाफ तहरीका में आ भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी जैन जी जो जंतर मंतर ते जशन पेपर लीक तां शुरू थियल तहरीक भारतीय वजीर आजम मोदी के गोडा खोड़ाए छड़िया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान जे इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वारे वजीर जे इस्तीफा जो बुधी दहली जे जंतर मंतर पार्क में वेठल जैन जी जो जशन। पुलिस पेपर लीक खिलाफ एहतजाज कंदड़न ते नई दिल्ली में तशद्दुद भी कयो हो। चीन पारां खिते में जारी सूरत हाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमेरिका ईरान खां मसले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकची जी ईरानी हमनसिब वांग जे सां किर्गिस्तान में मुलाकात। चीनी परडेही वज़ीर पारां ईरान जे ख़ुदमुख़्तियार जी हिमायत। वांग जी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त खिते में अमुन ऐं इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे सालसे वारनि कोशिशनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास इराकची चयो त अमेरिका जंगबंदी मुआहिदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तेहरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिशनि खे बरक़रार आहे। चकताण में वाद नथा चाहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाकात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते ग़ौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾे हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ संजीदा आहे, मुआहिदो करण नथो चाहे। तेहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ार आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआहिदे जो मेंबर हुअणु खपे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआहिदो न कंदासीं। ट्रंप जे चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। सऊदी इतिहादी फ़ौज पारां यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह ते हमले जी तस्दीक। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जे अल हुदीदा बंदरगाह में हूसी फ़ौजी ठिकाणनि स्ट्रेट जक हंधनि खे निशानो बणायो। अल हुदीदा बंदरगाह खे निशानो नाहे बणायो। समूरियूं बंदरगाहूं जहाज़नि जे अचवञ लाइ खुलियल आहिनि। सिंध में बदमनी ऐं करप्शन चोट चढ़ियल आहे। कराची समेत सूबे जा शहर खंडर बणियल आहिनि। कराचीअ खे बि 18 सालनि दौरान तबाह कयो वियो आहे। हेठी सतह ताईं इख़्तियारनि जी मुंतकिलीअ लाइ सभु आइनी रस्ता इस्तेमाल कंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सिंध में 2.6 करोड़ ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कंदड़नि माइरनि ते बि ॾंडा वसाया विया। सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लॻायो वियो, जंहिं सबबु दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं। बलूचिस्तान जे मस्तूं वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अर्ज़न जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिराई ताक तबाह कया विया आहिनि। ऑपरेशन अर्ज़न दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग बि वधी 13 थी वियो आहे। हुकूमत लाॻीतो 5 ॾींहं बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 3.66 रुपया ऐं डीज़ल 4.80 रुपया फ़ी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 335 रुपया 18 पैसा ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 383 रुपया 46 पैसा फ़ी लीटर थी वई। नवां अघ 24 कलाकनि लाइ लागू हूंदा। कराची में HIV जो गणती जोगो फैलाउ। इस्पतालूं ॿारनि में HIV वायरस जे पखेड़ जो सबबु बणजण लॻियूं। वलिका इस्पताल खां पोइ सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडीअ मां बि HIV जा केस ज़ाहिर। 4 महीननि खां 8 वरनि जे उमिरि ताईं जे 15 ॿारनि में HIV जी तस्दीक। जनवरी में 4, फेबरवरी में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 5 ऐं मई में 3 HIV केस रिपोर्ट थिया। मामले खे दॿाइण जी कोशिश कई वई। वधीक केस ज़ाहिर थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिब HIV मुतासिर ॿारनि जो इलाज सोशल सिक्योरिटी इस्पताल लांडी में थियो। वलिका इस्पताल में 78 ॿारनि में HIV जा केस ज़ाहिर थिया हुआ। नव ॿार एचआईवी सबब फोत थी चुका आहिनि।
0: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

भारत में जेएनसीजी पेपर लीक के खिलाफ तहरीक कामयाब। भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी जेएनसी जो जंतर मंतर जशन पेपर लीक था शुरू थियल तहरीक भारतीय वजीर आजम मोदी के गोडा खोड़ण ते मजबूर कर छो। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर आजम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनसी जो जशन। पुलिस पेपर लीक खिलाफ एहतजाज कंदड़न ते नई दिल्ली में तशद्दुद भी कयो हो। चीन पारा खिते में जारी सूरत हाल ते गणती जो इजहार। अमेरिका ईरान का मसले की हल लाए जल्द गाल शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी परदेही वजीर पारा ईरान की खुद मुख्तियारी की हिमायत। वांग जी चयो तो इस्लामाबाद मुफामती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ वञण जो वाहिद रस्तो है। बीजिंग पाकिस्तान में बेन मुल्क की ट्रैकड़ी वाल कोशिशों की हिमायत जारी रखो। अब्बास राखची चयो तो अमरीका जंगबंदी मुआदे की भंजकड़ी कंदे ईरान से हमला कया। तहरान की गालन वाली ख्वाहिश बरकरार है। छिकताण में वाद न था चाहूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकार से मुलाकात। ईरान खिलाफ वडन हमलन ते गौर विचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान ते वडे हमले बाबत अजा फैसलो नाहे कयो। ईरान गालन लाए संजीदा आहे मुआदो करण नथो चाहे। तहरान सा राबता जारी आहन नतीजन जो इंतजार आहे। सऊदी अरब के इब्राहिम मुआदे जो मेंबर होवण घुर्जे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिस्सो न बणजो दो त एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप के चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी।

0: पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर में चौमासी जहा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफसाबाद, विहाड़ी ए बन शहर में बरसात। मुख्तलिफ़ रोडन से गोले जो पानी बीठल, शहरी सख्त परेशान। शादात कोर्ट की कार इल्जाम हेठ जवाबदार पी हथा धी ए नौजवान कतल। संजर भट्टी थाने की हद में जवाबदार अली बख्श जतोई अफरोज इम्तियाज शाह के गोलू हणी कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार। पुलिस जो चवण है कार इल्जाम हेठ बिटो कतल थियो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिंजी स्किन खे दियो हिक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां खे रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एस

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GFM 94।

आप सुन रहे थे

भारत में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ जेएनसी की तहरीक आडो घोड़ा फोड़े छड़ा। भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तफी नौजवान जो जंतर मंतर ते जश्न। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल छन काकरोच जनता पार्टी। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा हुकूमत से गालाज खत्म करने का ऐलान कर छोड़ा।

सिंध में मेरठ जी लताड़ ए पांजा नवाजी खिलाफ नौजवान सरापा एहतजाज। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवानों के एहतजाजी कैंप बे डी भी जारी। नौजवान रात भी कैंप से गुजारी। मुतासर उम्मीदवार ने शागिर्दन पारा इम्तिहान 2024 के नतीजन के रद्द करण ए कमीशन में सुधारण ताई एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहरीन मूजिब मुतालबन की मनता लाए एहतजाजी कैंप एक हफ्ते

जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराकची जी चीनी हमनसब वांग यी सां में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामो इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो बीजिंग पाकिस्तान ट्रैकड़े वारनि कोशिश रखनि। अराकची चयो त अमरीका जंग बंदी मुआदे जी भञ कड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, छिकताण में वाद न चाहियूं।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात ईरान खिलाफ वडन हमला चयो त ईरान ते वडे हमले बाबत अन्या फैसलो नाहे कयो ईरान गालन ला संजीदा आहे वायदो करण नथो चाहे तेहरान सा राबता जारी आहन नतीजन जो इंतजार आहे इब्राहिम वायदे जो मेंबर होण घुर्जे सऊदी अरब इब्राहिम पर वायदो न कंदासी जे चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराम करण ते संगीन नतीजा की सऊदी इतिहादी फौज पारा यमन के अलहुदेदरेट ते हमले की तस्दीक सऊदी इतिहादी फौज चयो आहे त यमन के अलहुदेदा गवर्नरेट में हूसी फौजन ठिकानन के निशानो बणायो अलहुदेदा बंदरगाह के निशानो नाहे बणायो वयो समूरी बंदरगाहों जहाजन जे तवन लाइ खुलियल आहिनि सिंध में बदअमनी चढ़ल है कराची समेत सूबे जा शहर खंड बनल कराची के भी अड़न साल दौरान तबाह कयो वयो हेठी सतह तई अख्तियार की मुंतकिली लाइ सब आईमाल कंदासीं वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो है त सिंध में 2.6 करोड़ बार स्कूलन खां बाहर आहिन मुगवी बारन जी बाजियाबी लाइ एहतजाज कंदड़ मायरन ते भी डंडा वसाया वया सिंध मां लुटियल पैसो दुबई में लगा जै सबब दुबई में मिल्कियतूं महांगियूं थियूं आहिनि बलोचिस्तान के मस्तोंग वाले इलाके में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन लज़म जारी सिक्योरिटी जरियन मूजिब मुख्तलिफ कार्रवाई गर्दन जा केतरा ही थाक तबाह किया वया ऑपरेशन लज़म दौरान गर्दन जो थी वयो कराची में एचआईवी जो गणती जोगो फैलाव अस्पतालों बारन में एचआईवी वायरस की बणजन लगियो वलीका अस्पताल का पोई सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडिया में भी एचआईवी जा केस 4 महीनों का 8 वर्ष की उम्र तक 15 बारन में एचआईवी की तस्दीक जनवरी में 4 फेबरवरी में 2 मार्च में 1 अप्रैल में 5 मई में 3 एचआईवी केस रिपोर्ट थे मामले के दबाने की कोशिश की गई वधिक एक केस जाहिर थन जो खदशो जरियन मूजिब एचआईवी मुतासर बारन जो इलाज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांडिया में थो वलीका अस्पताल में 78 बारन में एचआईवी जा केस जाहिर थिया हुआ 9 बार एचआईवी सब सिंध में अज का 27 जुलाई ताई बरसातुन की अगकथी कुछ जिलों में शहरी बोर्ड जो भी खदशो जाहिर मौसमियात खाते मूजिब कराची हैदराबाद थरपारकर उमरकोट मीरपुर खास बदीन सांगर टंडो मोहम्मद खान मटियारी ए शहीद बेनजीराबाद जिलों में अज का 27 जुलाई ताई किथे हल्की तो किथे तेज बरसात जो इम्कान है इम्कानी बरसातुन के सीएम हाउस में रेन इमरजेंसी छी लागापियल इदारन के मुतहरक रहने की हिदायत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में चौमासी जा वसकारा जारी लाहौर अफजाबाद विहाड़ी एहसाद मुख्तलिफ रोडन ते गोले जो पानी बीठल शहरी सख्त परेशान शहदादकोट के कार इल्जाम हेठ जवाबदार हथा भाइटी नौजवान कतल संजर भट्टी थाने के हद में जतोई पंजे भाइटी अफरोज इम्तियाज शाह के गोली हणी कतल कयो वाके बाद जवाबदार फरार पने अकना खातू घोटाली कतल पुटन ते कतल जो इल्ज़ाम है।

लखी गुलाम शाह भरसा शहर बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान एक जनो कतल बिन औरतुन समेत चार जना जख्मी गोठ अरबाब शहर में घिटी के गाल जेड़े में समेत जख्मी थे चैनी गोठान के अस्पताल मुंतकिल कर।

0: गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
0: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
2: इरशाद ऑटो शोरूम मेहराब होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट थे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड ग्लैम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे और तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800
3: फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो डारियो जगह जा पावा नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाइंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014154056
4: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफिल ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003855569
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ते, अखियुनि जे मथां, ब्रिनि जे मथां, हथनि ते, पेरनि, तव्हां ॾिसंदो त जेको आहे सो ईअं जीअं छिलर, मच्छी जा छिलर जेको आहे सो निकिरी ईंदा आहिनि, ऐं उहे जेके जेको आहे सो मथी जा मथे जे मच्छी जा छिलर हूंदा आहिनि बिल्कुलु उन्हनि वांगुरु जेको आहे सो थी वेंदा आहिनि, ऐं पापड़ियूं ठही वेंदियूं आहिनि, ॻाढ़ा चुटा निशान ठही वेंदा आहिनि। अहिड़ा खोड़ सारा पेशंट हिन वक़्तु बि असां वटि अंडर ऑब्ज़रवेशन आहिनि, ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां ठीकु थी विया आहिनि, ऐं वॾी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो पेशंट जेको ॿिहंदा थी अचे ऐं ॾह ॾह वीह वीह सालनि में मुबतला हुजे ऐं उहो जेकॾहिं हुते ठीकु थी वञे ऐं पंहिंजा फीडबैक असांखे FM रेडियो ते ॾिए या असां वटि अची ऐं हिते इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए वञे, त हीअ हिकिड़ी वॾी ख़ुशनसीबी आहे जेको आहे सो असांजे क्लिनिक जी ऐं असांजे इलाज जी। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते होम्योपैथिक इलाज सां जेकॾहिं पेशंट अहिड़नि वॾनि बीमारियुनि में ठीकु थी वञे थो, त नंढियूं बीमारियूं हुनजे लाइ कुझु बि कोन्हे। वरी ॻाल्हि वरी बि असां हिकिड़ी कंदासीं त हिन सभु में रब ताला जी कर्म नवाज़ी आहे, जेकॾहिं उहो किथां बि शिफ़ा ॾिए त जेको आहे सो बिल्कुलु शिफ़ा थी सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां ई जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको आहे सो असां वटि इहे पेशंट्स ईंदा आहिनि ऐं इहे अहिड़नि बीमारियुनि में जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, त हिकिड़ा व्यूज़ बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं जेको उहो पेशंट लाइव जेको आहे सो असांखे फेसबुक ते जेको आहे सो रिकॉर्ड कराए वियो, ऐं उहो व्यूज़ इन ई बीमारीअ जे हवाले सां आहे। अचो तव्हांखे बि जेको आहे सो हिन सां जेको आहे सो बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं।
1: दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, दोस्त जा व्यूज़ आहिनि। जी डॉक्टर साहबु,

0: दोस्त व्यूज़ तव्हां ते पहुचाईंदासीं जेके मौजूदु आहिनि, छो जो जेको माण्हू सिहतमंद थी वेंदो आहे यकीन हुन जी बि हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे, उहे पाण बि चवंदा आहिनि त असांखे अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी शिफ़ा मिली आहे। त जीअं ॿियनि खे अव्हां इहो नोट करायो ॿुधायो त जीअं असांखे उहो असांजो मैसेज ॿियनि ताईं पहुचे त उहे बि जेको आहे सो उन मां फ़ाइदो हासिलु कनि। ऐं अचो त उन जा व्यूज़ ॿुधंदो आहे।
1: साल थी विया जेकी तव्हां मुख़्तलिफ़ किथां किथां इलाज
2: करायो?
1: जी जी, लाड़काणो मेरापुर चमड़ी जे डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो ऐं ॿियनि डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो ऐं ॿियनि डॉक्टर
0: ऐं सम्झा थो। डॉक्टर साहिबु, असां वटि उहो जेको आहे त असुल में पियल आहे हुन ते नेट ते पियल आहे, एफ बी ते पियल आहे, इन जे करे उहो इंटरनेट सिलो जे करे मसइलो पेश अचे पियो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-2196-8051 0301-2196-8051।

0: प्रोग्राम है सेहत श्री गाल शी मेहराबर एफएम 94 जो ही आवाज तुम जे समात नी पहुंचे पियो। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असन जे स्टूडियो मौजूद 0301-9186-8151 असन जो लाइव कॉल जो नंबर आहे। कॉल जी तरफ इंदासी दिसो के थान जो कॉलर हुंदो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, खुश आयो।
0: दुआ अलहमदुलिल्लाह। केर साहब पियो गलाए मुजा साईं? ॿी जॻह तव्हां बि इलाज करायो हूंदो, पर तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो, इलाज करायो, इनशाला रिज़ल्ट मिलंदो, फ़र्क़ु मिलंदो बाक़ाइदगी सां। ठीकु आहे भाउ, वधीक एफएम ॿुधो। डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो, हर जुमो छंछरु आचर हफ़्ते जा टे ॾींहं चेकअप फीस डॉक्टर साहिब जे तरफ़ां फ्री हूंदी आहे। तुंहिंजे बांभणनि जे ॻोठ जा इलाही इहो सियाल इहे ठरी जा ख़ासि कयले जाम पेशंट हूंदा अथई डॉक्टर साहिब वटि, जोड़नि गोॾनि जे सूर जा मुख़्तलिफ़ माण्हू शर जाम हूंदा अथई डॉक्टर साहिब वटि। ठीकु आहे न भाउ? माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहिब।
2: जी सर बिल्कुलु, हिकिड़ी जेको आहे सो बीमारी जॾहिं थी वञे थी त पोइ पेशंट जेको आहे सो तकलीफ़ में अची वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जोड़नि जी बीमारी बि में बि जेको आहे सो पेशंट घणा वरी पोइ मालिश वग़ैरह घणो कराईंदा आहिनि त या उन्हनि खे जेको आहे सो या ज़्यादातर जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा पेशंट जिन जे घुटननि में जिन जी गोॾनि में जेको आहे सो मिख हूंदी आहे हिकिड़ी जेकी घटिजी वेंदी आहे, गैप अची वेंदो आहे, पोइ उहे अॻिते हली जेको आहे सो गोॾा पाण में जेको आहे सो टकराइबा आहिनि ऐं पोइ भुरभुरी वेंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे इहा ई कोशिशि कंदासीं, ॿुधाईंदासीं त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी त उनमें डराई बिल्कुलु न कनि ऐं क़रीबी कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारनि। तर ईअं ई आहे त उनखे हिकु त जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जे पेशंट में वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, छो जो असांजो प्रोग्राम बि अवेयरनेस जे हवाले सां आहे, त वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे एहतियात। एहतियात इहा ई आहे त मालिश नाहे करणी, ओकड़ू नाहे विहणो, वज़न ज़्यादा नाहे खणणो, ॾाकण जेको आहे सो नाहे चढ़णी, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो यकदमि जेतिरो थी सघे त इलाजु जेको आहे सो कराइणु। इलाजु असां वटि घणो ईअं थींदो आहे त घणा वञी गोॾनि में सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो मालिशूं कंदा आहिनि या अदरवाइज़ ॿियो ट्रीटमेंट, त पोइ उन में वरंदो गोॾा जेको आहे सो वेही वेंदा आहिनि। इन जे करे इहो या कुझु कार्टिज़ोन दवाऊं अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिंजी आदत पइजी वेंदी आहे, पोइ जेसिताईं माण्हू उहा दवा गोरी न खाईंदो आहे त पोइ उनजो नतीजो इहो निकिरंदो आहे त अॻिते हली उहे गोॾा जेको आहे सो सुॼी वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे जोड़नि में ईअं थींदी आहे त उन्हनि जा जोड़ जेको आहे सो टेढ़ा थी वेंदा आहिनि, हॾियूं टेढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ उहे जेको आहे सो ॿियूं बीमारियुनि में मुबतला थी वेंदो आहे। इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी बीमारी में जेकॾहिं पेशंट थिए थो त असां वटि उनजो ट्रीटमेंट मौजूदु आहे ऐं रूबरू ॾेखारे सघूं था।
0: दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलनि प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रे लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-9186-8151।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट

है बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: जेको आहे सो काफ़ी फ़र्क़ु पइजी चुको आहे। तव्हां ॿियनि में जेके ॿुधनि था त उन्हनि जे लाइ छा मैसेज ॾींदो? बिल्कुलु, जेकॾहिं कंहिं बि मर्ज़ में माण्हू मुबतला आहे ऐं फ़र्क़ु नथो पए त उते रूबरू ॾेखारे सघंदा। सो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहराबपुर हमारी ख़बर आहे साम्हूं मदन कोटा पेट्रोल पंप कोठड़ी रोड ते मौजूदु हूंदी आहे, जंहिंमें हफ़्ते जा 6 ॾींहं यकनी जुमो छंछरु आचर सूमर अरबा ख़मीस बाक़ी अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे। सो एड्रेस बि असां ॿुधाईसीं ऐं क्लिनिक जी ऐं मुतारिफ़ बि अवां ताईं कयासीं ऐं हूअं बि गुज़िरियल असांजे पंहिंजी प्रैक्टिस में 3 साल प्रैक्टिस में जॾहिं बि पेशंट अहिड़े क़िस्म जो या कहिड़ी बि बीमारी में मुबतला हूंदो आहे त जॾहिं हुनखे दवा ॾींदा आहिनि अलाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदो आहे ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां अदे खे बि सोराइसिस बीमारी हुई जंहिंमें जेको आहे सो चमड़ी जी बीमारी जंहिंमें मेडिसिन्स ॾिनीसीं ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां उहो अॼु बिल्कुलु सिहतयाब थी करे ऐं व्यूज़ ॾियणु आयो ऐं इंटरव्यू ॾेई वियो आहे। त उन्हनि खे बि जेके असांखे ॾिसनि बि था त उन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾींदासीं त तव्हां जेको आहे सो कॾहिं बि कंहिं बि बीमारी में मुबतला हुजो त होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूरु करे, छो जो होम्योपैथिक इलाज बेज़र आहे, हिन जो को बि साइड इफ़ेक्ट आहे। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक
1: डॉक्टर साहब तमामु बहितरीन, ॾिसो जीअं अधे उहो पंहिंजा व्यूज़ ॾिना त अलहमदिल्ला ऐं ठीकु थी वियो आहियां, ख़ुशि थी वियो आहियां। उन ते मां छा महसूसु कंदा आहियो साईं डॉक्टर साहब?
2: जी साईं, बिल्कुलु इंतिहाई तमामु वॾी ख़ुशी थींदी आहे त हिकिड़ो पेशंट जेको लाइलाज थी करे अचे थो ऐं उहो असांजी दवाउनि मां असांजे इलाज मां होम्योपैथिक मां उहो ठीकु थी वञे थो त इन खां वधीक ख़ुशी जहिड़ी का ॻाल्हि न हूंदी आहे। छो जो हिकिड़ो कंहिंखे बीमार खे सुकून मिले त इहा वॾी हिकिड़ी जेको आहे सो इबादत वारी ॻाल्हि आहे।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहराबपुर FM 94 जो आवाज़। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो। 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिया शामिलु थी सघो था, 0301-91-8051, 0301-91-8051। डॉक्टर साहब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि जो असांजे स्टूडियो में अचनि था, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में ॼाण ॾींदा आहिनि, ॿिया बि कुझु व्यूज़ आहे अवां ताईं पहुचायूं था, जो जेको बि सिहतमंद थींदो आहे यकीननि असांजूं दुआऊं आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ जेके बि मरीज़ हज़रात आहिनि ऐं उहे सिहतमंद थी था वञनि। इहा असांखे ख़ुशी थींदी आहे ऐं असांजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे जो अलाह ताला उन्हनि खे सिहत बख़्शींदो आहे। FM जे थ्रू ॿुधी करे डॉक्टर साहब वटि पहुचनि था ऐं उन्हनि खे अलाह सिफ़ा ॾिए थो।
0: छा
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहब, हिनखे अधरंगो हुयो?
2: जी साईं, बिल्कुलु नंढो ॿार हुयो, 12-13 साल जी उमिरि हुई।
1: 12-13 साल वारे खे बि अधरंगो थिए थो? माना
2: थिए थो साईं।
1: अच्छा,
2: हू फेशियल पैरालिसिस हुयो जेको चहिरे ते जेको हुनजो हुयो, अख ते ऐं राइट साइड जा हुनजो असरु हुयो, अख ते ऐं चप ते हुनजो फ़र्क़ु हुयो ऐं पासो हुनजो सुन हुयो, घर हुयो जेको नंढो जेको आहे सो बिल्कुलु फील करे पियो ऐं उहो जॾहिं पहिरियां हुन ट्रीटमेंट

0: कारी ड्राक खाए रात जो तव्हां पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो नेराणे खाओ, उहो बि काफ़ी जेको आहे सो तव्हांखे फ़ाइदो ॾिए। लीमू पाणी हिन मौसम में तमामु बहितरु आहे, तमामु ज़रूरी आहे, उनजो इस्तेमालु कयो ऐं जेको आहे सो पाण खे जेतिरो थी सघे त सूरज जी तपिश खां जेको आहे सो बचायो।
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु, ऐं वाक़ई गर्मी आहे ऐं इन शदीद गर्मी में माण्हू काफ़ी ॾिसंदो, माना माण्हू फोत बि थी वेंदा आहिनि गर्मी में, के बेहोश थी वेंदा आहिनि, के बेहोश थी किरी पवंदा आहिनि। ऐं हिन वक़्तु जेकी गर्मी हले पई ऐं वाक़ई अहिड़ी ई आहे जंहिंमें हिन में ई माण्हू किरंदा आहिनि,
0: हिन में बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदा। ऐं उन जा कुझु जेके फोत थियण जा असबाब इहे बि आहिनि जो घणा वरी छा कंदा आहिनि त यकदमि जेको आहे सो ॾिसो त हींअर ॿाहिरि माण्हू आहे ऐं उनजो जिस्म तपियलु आहे, ऐं यकदमि वञी जिस्म ते तपियल जिस्म ते पाणी विझंदो आहे या तपियल जिस्म ते पाणी पीअंदो आहे त उन सां जेको आहे सो उहा मतिलबु पेशंट जेको आहे सो उन में फॉलिज थी सघे थो। ऐं जेको आहे पेशंट जेको आहे सो उन में बि छो जो हिकिड़ी शइ जूं जेके रगूं आहिनि उहे डैमेज थी वेंदियूं आहिनि, जॾहिं कंहिं बि गर्म शइ ते तव्हां पाणी विझंदो त उहे जेको आहे सो बिल्कुलु तव्हां ॾिसंदो त उन्हनि मां भाप निकिरंदी आहे, या घणा ए सी में हूंदा आहिनि ऐं ए सी मां यकदमि जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरी वेंदा आहिनि त उहो बि नुक़सानकार आहे, या ए सी में आहिनि यकदमि वरी वेंझण विया, त इहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। इन्हनि जो जेको आहे सो थोरो घणो एहतियात तमामु जेको आहे सो ज़रूरी आहे,
1: तमामु ज़रूरी आहे, तमामु बहितरीन। दोस्तो, मूंखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-9196-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाब शाह, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब, 0301-9196-8051 होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर। कॾहिं बि तव्हांखे मायूस न आहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाज मौजूदु आहे। जेकॾहिं तव्हांखे गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जो सूरु आहे, जोड़नि गोॾनि जो सूरु आहे, कुंदरक जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी, कन वहे थो, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचे थो, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालज, खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंग सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो वधी वञणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहिबु, आख़िर में तव्हां असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा?
0: जी, वॾी महिरबानी। पैगाम इहो ई आहे त पीउ माउ जी तमामु घणी ख़िदमत करियो ऐं जेको आहे सो जेतिरो थी सघे त उन्हनि खे जेको आहे सो ख़ुशि रखंदा कयो।
1: ऐं असीं तव्हांखे इहो चवंदासीं त अञा जेके ॾींहं आहिनि जेके जेके वेहो था हिते मेरापुर शहर में, असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे इहो ब्रीफ कंदा हलो, इहो रिपीट कंदा हलो, तव्हांजो नंबर या तव्हां सां केरु राबितो करे, कहिड़े नंबर ते राबितो करे थो, कहिड़ो ॾींहुं मां चेकअप फ्री रखियो आहे।
0: जी बिल्कुलु, हिन में हिकिड़ो ॾींहुं ज़रूरु यादि रखिजो त अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अंगारे जो ॾींहुं जेको आहे सो आउट ऑफ सिटी हूंदा आहियूं, इन जे करे अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। बकाया हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो, छंछरु, आचर, सूमरु, अरबा, ख़मीस असां मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप ते मौजूदु हूंदा आहियूं। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं। कॉन्टेक्ट नंबर 0301-9196-8051 इहो ज़रूरु यादि रखिजो। ऐं हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, यानी 3 ॾींहं जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं। हिन में मरीज़ खां चेकअप फीस नाहे वरिती वेंदी, बाक़ी मरीज़ दवाऊं जेको आहे सो पंहिंजूं ख़रीद कंदो आहे, बाक़ी चेकअप फीस हुनखे माफ़ु हूंदी आहे।
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, असांजे स्टूडियो में मौजूदु हो सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु, जेको सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहियो हो। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं, मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। इन हिते अॼु खां प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। दोस्तो, असीं इहो ज़रूरु चवंदासीं त पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे वालदेन जो, पंहिंजे नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, पाड़े वारनि जो, सभिनी जो ख़्यालु रखो। जीव आहे त जान आहे, सिहत आहे त सभु कुझु आहे। हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाव करियो। इन हिते अॼु खां प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त, दुआउनि में यादि रखंदा। अलाह नगहबान, अलाह वाही।

पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर में चौमासी जहा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, विहाड़ी ए बन शहर में बरसात। मुख्तलिफ़ रोडन से गोडे जो पानी बीहजी वो। शहरी सख्त परेशान। भारत में मोदी सरकार पेपर लीक खिलाफ जेंजी की तहरीक जो गोडा खोड़े छड़ा। भारत जो तालीम वालों वजीर मुस्तफी नौजवान जो जंतर मंतर जशन। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी तल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेंजी जो जशन। काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर की इस्तीफा ए हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान कर छोड़।

0: सिंध में मेरठ जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़िस आॾो नौजवाननि जे एहतजाजी कैंप ॿिए ॾींहुं बि जारी।
1: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcast intros. Your meme page finally has a voice. With Avatar 4, turn any image, cartoon, anime, pet, whatever, into a talking head that actually lip syncs. No deep fakes, no uncanny valley, just audio synced magic. Content creation just leveled up. Upload, type, share. Avatar 4 is live. Go play.
0: चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणतीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जी चीनी हमनसब सां मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी ट्रैकड़ियुनि वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास अराग़ची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआहिदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे। छिकताण में वाद नथा चाहियूं।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेझन सलाहकारन से मुलाकात, ईरान खिलाफ वन हमलों से गौर विचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान से वे हमले बाबत अजा फैसलो ना कयो, ईरान गाल संजीदा है, मुआदो करण नो चाहे। तहरान से राबता जारी है, नतीजन जो इंतजार है। सऊदी अरब के इब्राहिम मुआदे जो मेंबर होने घुर्जे, सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिस्सों न बणजो तो एटमी कंदी। ट्रंप की चीन ए रूस के ईरान के हथियार फराहम करने संगीन नतीजा भोगण की भी धमकी।
1: थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हिंदुस्तान में अमन अमान जी क्याम लाइ सहकार जारी रखंदो। बलोचिस्तान जे वडे वजीर सरफराज बुख्टी चयो त दहशतगर्दी खिलाफ हर महाज ते कदम अॻिते रहंदा, दबाव में न ईंदासीं।

0: सिंगल हिट हुई।
1: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: भारत में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ जेएनसीए की तहरीक आडो गोडा खोले छड़ा। भारत के तालीम वाले वजीर इस्तीफा दे छी, नौजवानों जो जंतर मंतर जशन। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियल वजीर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मंजूर कर वरती। तालीम वाले वजीर की इस्तीफा जो बुधी दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनसी खुशी में झूमी उठा। काकरोच जनता पार्टी तालीम वाले वजीर के इस्तीफा और हुकूमत से गालन बाद एहतजाज खत्म करने जो ऐलान कर छोड़ा।

0: लॻे थो त ही छोकिरा थकिजी पिया आहिनि, ही छोकिरा मायूस थी विया आहिनि। असां सिंध जो हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल शहूर आहियूं, जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जी तयारी कई आहे। असां थकंदासीं कोन, असां आख़िरी दम ते विढ़ंदासीं।
1: जॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ लाइ बीहंदव न, हक़ तव्हांखे कॾहिं बि घुरंदव हक़ कोन मिलंदो आहे, हक़ लाइ विढ़णो पवंदो आहे। इहा तारीख़ रही आहे जेको आहे, उन्हनि खे रिज़ल्ट कोन था मिलनि। घुरनि छा था, छा था घुरनि? हिकिड़ो त पॉइंट आहे
2: एसपीएससी असांजा मुतालबा सीसी 24 खे नल एंड वाइट न कंदी, भर्तियूं न कंदी, तेसि ताईं असां कैंप खे रहंदासीं।
3: हिन इदारे में ट्रांसपेरेंसी शफ़ाफ़ियत आंदी वञे, करप्शन जो इदारो गड़ा।
4: सिंध में मेरिट जी लताड़ ऐं पंहिंजा नवाज़े ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज बणियल। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़ीस आॾो नौजवाननि जे एहतजाजी कैंप ॿिए ॾींहुं बिचारी। नौजवाननि राति बि कैंप ते गुज़ारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि पारां चटाभेटी इम्तिहान 2024 जे नतीजनि खे रद्द करण ऐं कमीशन में सुधारनि ताईं एहतजाज जारी रखण जो ऐलान। मुज़ाहिरनि मूजिबि मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी कैंप हिकु हफ़्ते ते जारी रहंदी, जंहिं बाद आईंदा जी हिकमत अमली जो ऐलान कयो वेंदो। चीन पारां खिते में जारी सूरतहाल ते गणितीअ जो इज़हार। अमरीका ऐं ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राग़ची जी चीनी हमनसब वांग यी सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांग यी चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामो खिते में अमुन इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी ट्रैकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास राग़ची चयो त अमरीका जंग बंदी मुआदे जी भञकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। तहरान जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश बरक़रार आहे, छिकताण में वाद नथा चाहियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वेझनि सलाहकारनि सां मुलाक़ात। ईरान ख़िलाफ़ वॾनि हमलनि ते ग़ौर वीचार। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते वॾी हमले बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे कयो। ईरान ॻाल्हियुनि लाइ संजीदा आहे त मुआदो करण नथो चाहे। तहरान सां राब्ता जारी आहिनि, नतीजनि जो इंतज़ारु आहे। सऊदी अरब खे इब्राहिम मुआदे जो मेंबर हुअणु घुरिजे। सऊदी अरब इब्राहिम मुआदे जो हिसो न बणजंदो त एटमी मुआदो न कंदासीं। ट्रंप जी चीन ऐं रूस खे ईरान खे हथियार फराहम करण ते संगीन नतीजा भोगण जी बि धमकी। सऊदी अरब ऐं यमन जे हूसी बाग़नि विच में छिकताण वधीक तेज़। यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट ते सऊदी जे हमले खां पोइ हूसी बाग़नि पारां सऊदी अरब जे शहर जाज़ान ते मिज़ाइल हमले जी दावा। सऊदी इतिहादी फ़ौज चयो आहे त यमन जे अल हुदैदा गवर्नरेट में बंदरगाह खे न पर हूसी फ़ौजी ठिकाननि स्ट्रेटजिक हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। सिंध में अॼु खां 27 जुलाई ताईं बरसातुनि जी अॻकथी। कुझु ज़िलनि में शहरी बोर जो बि ख़दशो ज़ाहिर। मौसमियात खाते मूजिबि कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगर, टंडू, मोहम्मद खान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद ज़िलनि में अॼु खां 27 जुलाई ताईं किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। इम्कानी बरसातुनि खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क क़ाइम करे छॾी। लाॻापियल इदारनि खे मुतहरक रहण जी हिदायत। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में चौमासी जा वसकारा जारी। लाहौर, सरगोदा, हाफ़िज़ाबाद, विहाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति। मुख़्तलिफ़ रोडनि ते गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल, शहरी सख़्त परेशान। बलोचिस्तान जे मस्तोंग वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन अल अज़म जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मुख़्तलिफ़ कारवायुनि दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। ऑपरेशन अल अज़म दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 13 थी वियो।

0: क़िलनि ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-46-0100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
8: 0301-399-2836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 03013803843।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन। हर जुमे, छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निचो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लए 03011 96 851।
0: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो हिक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार। कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: السلام علیکم ادا.
4: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
3: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
4: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا؟
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
4: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836.
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.